पंचप्रधान पंचकाग्रत्यान चैको कह करे विचार करते के कौने नाही समार दो धर्म दिया का पुत संतों का प्रक्या जिनसु चैको बुझे हवे सचार डबले ऊपर कित बार तरते हर प्रे हर चिस्ते बार तले कम जोर जी चातुं गा के ना समरा लिखिया वरी कमाम ए हो लेख लिख जाने कोई लेखा लिखिया कित होई केचन तान चुआलियो रूप केची दाचने कुंकुर कित बसाओ एको कमाओ चिस्ते होई लक्चनिया कुछ कमन का विचार वरी न जावे एक बार चौथुर बावे साइबलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख जप संक असंख चाप संक भाव संग पूजा संग तप था संग ग्रंथ मुक्ति पा असंख चौपन मान रहे दास संग भगत कुंगिया विचार असंख सत्य असंख चार असंख सुन मोबक्सार असंख मन लिव लाइन चार कुछ कम कहा विचार वरिय न जाव एक बार चौथुर भाव साइबलकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मन कान कौर असंख छोराम कौर असंख कम कर जाहि चार संकावत हठिय कम माहि संख पापे पाप कर जाहि असंख निया करे फिराहि असंख मलेच मा बखाहि असंख निरक सिर कार बार नानक नीच कह विचार वरिय न जाव एक बार चौथुर भाव साइबलिकार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाम असंख धाम अघम अघम संख लो असंख है सिर भाव अखनी नाम अखनी सला अखनी ज्ञान की कुंगा अखर लिखन बोलन बान अखर सिर संजोग खान चेने लिखे तिसर नाय Chip for my tip to pie. Chaita kita tata na. Vina vena ikota. Kudra kaman kaha vichar. Vodiana java ekvar. Jodhra bhavi saibalikar. Tu sada salamat nirankar. Vodiya hath peyotande. Pani dote utruske. Murpliti kaparhoi. De sabune odoi, varia ma papa kai san, odo pena vekeran, buni papi akanahi, kurka kardna likle jahum, ape pisha peka, nani kukmi apu jahum, tira tap de adatan, jako pave tokaman, sunye mania, man kitaba, Antirgatiratmana sogun teni me nahi koi bingun kite bhaganoi swasat bani bunmal satsan sadaman chal kaman suvela vaka kaman kaman titta kaman var kaman sruti maho kaman chid hoa kar veyana paya panditi Jehovah like Puran, Bhaganapayo Kadia, Jilikan like Quran, Tid Varna Jogi Jani, Rut Mahana Koi. Ja Karta Suti Kosa Jayape Jani Soi, Kilkaraka Kipsa Lai Kyoga Nika Jana, Nana Kakan Sukho Ake Duixiana. Vada saiba vadi nai kita jakove nare cheko apunchane ake kiana soi patala patala ka gansa gans ora kora bata ke pe kehane ka jabat se satari ke kateba asalu kadat leka hoi te likia leka hoi vanas nana kumada kia Ape jane am
Salahi salaiti surinapanya nariyateva pavesamuna janiyem sumun chasubtangira seti maldan kirituna hovini chaitismanana visare antana siddhi kena antana karne dena antana vekansinana antana jampe kya manman antana jampe kita ka antana jampe parava ankana kite bilai take antana pai jai eo atna jani koi buddha ke yam buddha hoi vada sai uchata uche upa uchana eo vada ucha hobi koi tisu cheko jani soi cheko jane apa nan kanadri karmi dan buddha kamla kyana jai vada data tilnat mai kete mange chalupar kete aganat nihivichar kete kachu tevekar kete lale mukurpahi kete murakai kai kete adukumukumai ebi da tiri da ta ban kalasi mani hoi hor akana sakke koi cheko kai kakampai O jane chitya mai kai, ape jane ape de, ake sebe ke ke, jisno bakshe sabitsala, nane padshahi padshah. Amor gun amor bapar, amor bapari e amor bendar, amor lave amor lechai, amor bai amor lasamai, amor dan amor mudiban. Amo tom, amo pavan, amo bakshish, amo nishan, amo karma, amo fanman. Amalo amo lakyana chai, aka kre liv lai, ake ve parpunan, ake pre kre vakyan, ake barme, ake yin, ake gopi te gobin, ake ishir, ake sir, Ake kete kite but ake dana vake dev ake suna munchanse kete ake akampahe kete keke utu chahe ete kite horkre ta akana sake keke chever babi tever hoi nanak jane sanchasoi Cheko ake bovi karta likya sir Gavar gavar, sodhu kea, sodhu kea, chippe sarv smali, vajitariya nik. Asanka kete vavana hare, kete rakpurisyo kehye, kete gavana hare, gavan tuno paman panive santur, gavan rachandaram duare, gavan chit kubilika jane, Liklik dana bichari, kabe ishir barma devi, soan sadasvani. Kabe indin jasin beti, deva tiyadir nali, kabe sitsumani under, kabe sadi chari, kabe jati sati santoki. Kabe Via karare, kavan pandit pananaki sur, chuchu vela nali, kavan mohaniyan man mohan, surka much peale, kavan ratanupai tiri atsat, tirat nali, kavi jod mahabal sura, kavi kani chari, kavi kanmandava banda, kakarake dani, se to no gave jantur bhavan, Vate tiri bhagarusali, hoa kiti gavan se me chitanavan, nanakya vichari, soy soy sadasacha saiba, sacha sachinai, habi hosi jana jasu. Rangi rangi bhati kar kar jansi maya chinupai,
कर कर बैठे कीता अपना चिम चिस देवन आए सब ज्योतिष पावे सोए कर से हुक्म न करना चाहे सौ पद शाह साहब पद साध नानक रहन में चाहे मुंड संतोख सर पद जलनी टिया की कर बिबुल किंच खाओ खुआनी खाए अजगनंद पंची आए पंची सगोच मांति मांची ते जंची अदेश से अदेश आज नील नाद ना हजे को वेश बग किया दिया बंदान खट खट पाचे नार आप ना ना थी सब जाके रिद से राव रसाद संजल भी चग दोई कार चलावे लेके आवे बाग अदेश तिसे अदेश आद नील नाद ना हट चुग चुग एको वेश एक माय जुगत आए तेन चले परवान एक संसारी एक बंदारी एक लाए दी मान जिव तिस बावे तिव चलावे जिव होवे फुन मान ओ वे के ओ न नर न आवे बोते एल विदान अदेश तिस ये देश आद नील नान ना चुग चुग एको वेश आसन लोय लोय बंदार जब किच पाय सोए कर कर कर बेखे सिर जना नानक सचे की सची खा अदेश से अदेश आन नियन नान ना हच्चु चु एको वेश एक तुझी बो लखो हे लखो वे लख फीस लख लखे लाखिये एक नाम जगदीश एक राहि पर पवरिया छोड़िया हुए किस सिंगला काश की किताए दिस कावे खन मंद अवर बंद कर कर सिंगला काश की किताए दिस नानक नजी पाये कुरे कुरे थीस आखन जोर चुपेन जोर जोन मंगन देन जोर जोन चीरन मनन जोर चरण राज मामन सोर चरण सुति ज्ञान विचार चरण जुगति तुते संसार जिस चो कर वे के सोय नान कुतम नीच न कोय राति रति तिथि वर पवन पानी अग्नि पंचा जिस विच डॉति तप की धर्म सा जिस विच जीव जुग के रन कर्मी हर तिस के नाम अनेक नन कर्मी कर्मी होय विचार सचा सचा निर्बन चित्ते सोम पंचवन नद्री कलम पमे निशान खच पकाए होते पाए नानक के अचापे जाए धर्म खन का एओ धर्म ज्ञान खन का अको करम खेते पवन फनि वसंत खेते का महेश खेते बर में कर कर रूप रंग के वेश खेते करम भूमि में खेते खेते धूप देश खेते अंचंच खेते खेते मंडल देश खेते सिर बुना खेते खेते रंस मन खेते थानी खेते बानी खेते पतलन खेते सुति सेव खेते नानक अंत नान ज्ञान कमे ज्ञान प्रचन चिते ना बनो करुणन सरम कम की बानी रूप चिते कर कनिया बोल चुनुप ताकि अगला कथिया न जाए चे को कह पिछे पिछताए चिते करिए सर मत मन बुद चिते करिए सदा सदा की सर करम खन की बानी चोर चिते और न कोय और चिते चोर महाबुसुर ते में राम रहिय बपुर चिते सीतो सीता मैं हम माय ताके रूप न खतरे जाए नाओ मन न ठागे जाए जिनके रव से मन मान चिते भगव से के लोग करिय नन सच्चा मन सोय सच खन वसे निरंकार कर कर वे के नर नाओ चित्ते कन मंदो वन बन
Jacob Kateta Antana An Chete Lo Loa Kar Jim Jim to Vegem Kar Veke Vigse Kar Vichar Nana Kapana Karasar Japahara Dibrasanyar Heron Matveda Tiar Bokala Kamtata Banda Baam Yetita Kariyasho Sachita Sal Jinko Narakaram Tinkar Nanakanadri Narunahal Slog Pavan Guru Pani Pita